0: BBC World Service and now Witness History with me, Reena Stanton Sharma. That's the unmistakable voice of Asha Bhosle, India's Queen of Melody. We're heading back 15 years to 2011, when she earned the title of the most recorded artist in musical history.
1: मैंने तो सभी किस्म के गाने गाए हैं यानी कव्वाली से लेके कैबरे से लेके रॉक एंड रोल क्लासिकल आप जो कहें मैंने सारा ही
0: आशा भोसले स्पीकिंग टू द बीबीसी इन 1987 आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया शी रिकॉर्ड हाउ शीड संग एवरीथिंग फ्रॉम कव्वाली अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल इस्लामिक म्यूजिक टू क्लासिकल रॉक एंड रोल एंड पॉप वेयर शी मेड हर नेम. This versatility would see her transcend barriers and embrace the ever-changing landscape of the entertainment industry. As a playback singer, she would record songs for films in a studio, which were then lip-synced by actors on screen. Here she is performing In Aankhon Ki Masti from the film